प्रोग्राम में, अनऑफिशियल इंडियन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है. दिस इज़ आई एम रेडी और मैं प्रेजेंट कर रही हूँ 97.1 FM 3 MDR से इंडियन प्रोग्राम. यूजुअली ये प्रोग्राम मैं प्रेजेंट करती हूँ ऑन द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ संडे को 6 से 7 बजे तक. और इस प्रोग्राम का नाम ऑन दोज डेज होता है उन रंगों की उड़ान, द फ्लाइट ऑफ दोज कलर्स. पर आज सेकेंड संडे है और मैं अनऑफिशियल, आई मीन या पॉप अप शो कर रही हूँ यहाँ पर आज, बिकॉज आई जस्ट फेल लाइक कमिंग इन एंड फॉर ये जो पॉप अप शोज, आई मीन मैंने लास्ट टाइम भी किया था फोर्थ संडे को. और ये जो है, ये इसका जो इसके पीछे जो एक वो थॉट है वो, और जो इंटेंशन है वो उन रंगों की उड़ान से, इट्स अ बिट डिफरेंट. और या सो आई एम हियर. एंड बाय द वे, बिफोर आई, इससे पहले कि मैं शो प्रॉपर, आई मीन वंस, इससे पहले कि मैं शो के बारे में बात करना शुरू करूँ, आई एम हैविंग सम टेक्निकल इश्यूज हियर. आज जो स्टूडियो का जो सिस्टम है वो फॉर सम रीजन इट्स आस्किंग मी फॉर अ पासवर्ड विच आई डोंट हैव, बिकॉज यूजली आई डोंट हैव टू पुट इन एनी पासवर्ड हियर. एंड आई कॉन्ट एक्सेस माई म्यूज़िक लाइब्रेरी जो कि मेरी इस पे है. सो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है शो, बिकॉज आई विल बी जगलिंग बिटवीन अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स जो कि यूजुअली, यू नो, इट्स सो ईजी, इट्स स्ट्रेट अप देयर एंड आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट. और आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डांस हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंट स्क्रीन्स और डिफरेंट डिवाइसेस में से, बट दैट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ. तो या सो थोड़ा सा आई एम जगलिंग बिटवीन अ फ्यू थिंग्स. एंड यस, आज का शो जो है, आज सो लास्ट टाइम जो मैंने शो किया था अनऑफिशियल, आई मीन नॉट अनऑफिशियल, अनऑफिशियल, ओके, एक्सेप्टेड. तो वो उसका उस दिन आई हैड स्पोकन अबाउट वैराग्य एंड आई हैड कॉल्ड दैट शो उन रंगों की मंजिल. और आई वॉन्टेड टू से फ्यू थिंग्स उसकी टुवर्ड्स द एंड, मुझे याद आई, पर उस तब तक टाइम निकल गया था. एंड देन आई थॉट कि ओके, जब नेक्स्ट अनऑफिशियल शो प्रेजेंट करूँगी तब बात करूँगी. बट नाउ आई फॉरगॉटन, टोटली फॉरगॉटन अबाउट व्हाट आई वाज गोना शेयर उसके कॉन्टिन्यूएशन में. सो जब आएगा तो आएगा यार. आज के शो का, एज वी नो कि आज नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, सो आई थॉट कि ओके, आई टॉक अबाउट नवरात्रि. एंड ऑल्सो इफ यू ट्यून इन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दिस प्रोग्राम आई प्रेजेंटेड इन इंग्लिश ऑन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ संडेज. एंड द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू ब्रिंग कल्चरल अवेयरनेस, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड या शेयर अ बिट अबाउट दैट लैंड, ब्यूटिफुल लैंड इंडिया, एंड उसका कल्चर के बारे में. एंड यस या सो एंड इफ यू वांट, और आप इस शो को कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप से भी सुन सकते हैं. एंड इफ आई डोंट इवन नो इफ एनीवन लिसन्स और ट्यून्स इन, क्योंकि आज तो वैसे भी इस शो के प्रोमोज नहीं बने हुए और आज तो ये वाला तो एडवर्टाइज भी नहीं है. आई डोंट एक्चुअली, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए, हवा में, आसमान में और उसमें यू नो वाइब्रेशंस के लिए. सो वो यू नेवर नो कौन क्या कैच करे. एंड या कभी कभी सिर्फ अपने, आई मीन या. तो अभी आज का शो, आई टू, एज आई सेड, आई हैव टू जगल बिटवीन अ फ्यू डिफरेंट डिवाइसेस एंड सी कि कहाँ से कौन सा म्यूजिक कहाँ से बजेगा. पर अभी मैं देवी मंत्र चलाने वाली हूँ. सो आई एम गोना, सो टुडे इट्स अ स्टार्ट ऑफ द 9 days ऑफ प्रेयर्स, जो कि नवरात्रि का, जैसे मैं बतानास नवरात्रा, जो नवरात्रि जो वर्ड बोलते हैं तो उसमें जो भाव आता है, द इमोशन दैट एक्सपीरियंस इज अ होल कल्चरल बैकग्राउंड, डिवोशनल बैकग्राउंड, बिकॉज टुडे इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन. दिस इज स्टार्ट ऑफ द 9 days ऑफ वर्शिप ऑफ द फेमिनिन एनर्जी, the feminine form, divine form. And today is the first day of worship, and I have so many beautiful memories of these 9 days of prayers and worships, and I'm going to share those stories about
those are very beautiful memories of my childhood. Some of the most beautiful memories of my childhood. And yeah, I'm going to share those stories. So today is the first day of those 9 days. And if you go to an Indian temple, there's a lot of prayers, and the temples will be fully decorated with beautiful lights and the divine feminine, the goddess. So she's worshipped with a lot of enthusiasm and love and devotion. So yeah, so I'm really excited about it. So I'm going to play this Devi mantra, which is in Sanskrit. I don't understand a word of Sanskrit, but the vibe of this mantra is so strong, so powerful. It just fills you up with that energy. And by the way, when I just realized I've been talking continuous non-stop for the last few days, but that's okay, unofficial. Aaj mujhe sab maaf hai.

You're listening to Rary और आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उन रंगों की चमक, the shine of those colors. And yes, by the way, we are back on track. Amazing. We've got a wonderful team here. अभी थोड़ी देर पहले टोनी गॉट ने मिच से बात की एंड मिच केम इन एंड ही रिजॉल्व माय जो मेरे को यहाँ पे मुश्किल हो रही थी एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक. थैंक यू सो मच मिच फॉर हेल्पिंग आउट. थैंक यू सो मच टोनी फॉर गेटिंग मिच एंड हेल्पिंग मी गाइस रियली. और अब मैं शेयर करने वाली हूँ. सो यस, दिस वॉज ब्यूटिफुल शिव शक्ति बाय ब्लिस. और इसमें कितनी सुंदर एक्सप्रेशन है ऑफ द फेमिनिन एनर्जी एंड आई जस्ट लव इट कि एक एक चीज़, एक एक जो एक्सप्रेशन है, इट वो पूरे उस एसेंस को, फेमिनिन एसेंस को पूरे इन इट्स प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट एक्सप्रेशन फॉर्म में कैप्चर करता है एंड आई जस्ट लव दैट. और अब मैं ये नवरात्रि हैं, इसकी मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं नवरात्रि की. I don't even know. By the way, if you want to send a text and share a story or anything, though, you can send a text on the studio text line. The number is 0497102000. It's 0497102000. And yes, main unofficially aaj yahan hoon. But when I was little, to I come from up north, Chandigarh se. पर मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो चंडीगढ़ की नहीं है. मेरी प्राइमरी स्कूलिंग वो अमृतसर की है, जो कि आई कम फ्रॉम अप नॉर्थ ऑफ चंडीगढ़. दैट्स यस अप नॉर्थ. बट माय प्राइमरी स्कूल सो आई वेंट टू सो वो जो है वो जो अमृतसर की सो माय प्राइमरी स्कूलिंग इज़ फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड अमृतसर जो विच इज़ हार्ड कोर पंजाब, लाइक फुल ऑन प्रॉपर पंजाब. Whereas Chandigarh is a bit different, and when I say Punjab, so what it means is that it's full hardcore. Not almost, but tradition based, and proper like culture, and you experience culture and tradition in a very proper form. In Amritsar, but Chandigarh is a bit different. Chandigarh, it's a modern city, and the people from different states, they come to Chandigarh, some for better education because it's got a lot of good colleges. It's got a university which is one of the oldest universities of India. Long story, baad ke liye, kabhi aur ke liye. Anyways, coming back to Navratri, I've got 6 minutes left. I have to tell this story. So when I was little and main Amritsar mein tab thi, aur Amritsar mein wo proper tarike se manate the. And wahan pe kya hota tha Navratri ke time pe? Beautiful memories. तो हम छोटे छोटे हम लोग लाइक आई वॉज क्या फोर्थ फिफ्थ में होंगी और एंड हम एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स हम लोगों की वो एक टोली बन जाती थी और नवरात्रि के दिन नवरात्रि जैसे फर्स्ट डे जब होता था तो तब जिन्होंने एक्सपीरियंस किया दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ इट. तो वो फर्स्ट डे आप वो जौ बीजते हो, वो सभी के घरों में वो बीजते थे, वो एक छोटे से पॉट में यू वुड सो द सीड्स ऑफ दिस वो जौ, अब आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पर उसको वो बीजते हो और देन वो 1 week में इट ग्रोज ऑलमोस्ट लाइक 9 or 10 inches लंबा हो जाता है वो. और जब फिर जब अष्टमी होती है सो ऑन द 8th day ऑफ दिस वर्शिप्स उस दिन कंजकें होती हैं और कंजकें जो है दैट यूज टू बी द मोस्ट अमेजिंग डे. उस दिन हम सभी गर्ल्स आसपास के नेबरहुड की हम लोगों को सारे आसपास के घर के जो लोग होते थे वो हमें इनवाइट करते थे. दैट वाज लाइक अ प्रॉपर हर साल में 2 बारी का ऐसा होता था कि वी वुड गो हर एक के घर में एक एक करके उनके घर में पूजा होती थी. एंड द बेस्ट पार्ट यूज टू बी कि जो उनके घर में जो बड़े जो मेल मेंबर्स होते थे वो सभी हम सभी के पाँव धो के अच्छे से लाइक एक देवी की तरह हम सभी को लाइन में लगा के पाँव धो के पाँव छू के कोई माथे टेक के लाइक इट यूज टू बी सच एन इंटरेस्टिंग थिंग कि जो दिन के जो आगे पीछे जो वो पूरे
यू नो जैसे नेबरहुड के जो बॉयज जो होते थे छोटे बच्चे वो वैसे लड़ पड़ते थे, पर उस दिन उनको भी हमारे पाँव छूने पड़ते थे और वो इतना वो उनके एक्सप्रेशन इतने नाक मुँह चढ़ा के वो कि इनके पाँव छूने पड़ रहे हैं और एंड वी यूज टू टीज देम कि देखा कि तुम्हें यू नो लाइक दैट. तब इतनी समझ नहीं थी कि यू नो कि जो ये जो रीति रिवाज है ये क्या है क्यों है, बट दिस वॉज द फन बिट